ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानो का कोनिचिवा नमस्कार।
1: सभी साथियों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब और जापान में साइकिल से जुड़े ब्लू टिकट चालान पर एक रिपोर्ट।
0: रोहिणी जी, देखिए अभी जापान में लंबी छुट्टियों का सिलसिला रहा, आप कहीं घूमने गई थी क्या?
1: नहीं, ऐसी छुट्टियों में हर जगह भीड़भाड़ ही रहती है, इसलिए ज्यादा कहीं गए तो नहीं।
0: अच्छा।
1: लेकिन हाँ, एक दिन पार्क में मैंने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने जापानी एनिमेशन के किरदारों का वेश धारण किया हुआ था। शायद कोई मेलजोल का कार्यक्रम रहा होगा इन लोगों का, तो मैं उन लोगों को कुछ देर तक देखती रही। और ये वेशभूषा इन्होंने कहाँ से खरीदी होगी या फिर खुद बनाई थी क्या, सोचती रही।
0: अच्छा। हाँ, इसे कॉस्प्ले कहते हैं और इसकी धूम जापान तक ही सीमित नहीं है, दुनिया भर में कॉस्प्ले के आयोजन होने लगे हैं और भारत भी कहाँ दूर है।
1: अच्छा, ऐसा है क्या?
0: हाँ, और पता है इस साल वर्ल्ड कॉस्प्ले समिट में भारत की जोड़ी ने प्रथम स्थान हासिल किया। बहुत अच्छा कॉस्प्ले था उनका, हालांकि वे कौन से किरदार बने थे ये मैं नहीं कह सकती।
1: मैं तो खुद कभी हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन जो लोग करते हैं उनके शौक को सलाम है।
0: सही बात है। और श्रोताओं, अगर आपको भी कॉस्प्ले में रुचि है या जानना चाहते हैं कि ये कॉस्प्ले क्या है, तो हमारी वेबसाइट पर एक लघु वीडियो है एनिमे जापान 2026 में कॉस्प्लेयर्स की धूम। टोक्यो में इस वार्षिक एनिमे आयोजन में जापान और दुनिया भर के कॉस्प्लेयर्स ने हिस्सा लिया।
1: अच्छा, ये तो मैं भी देखना चाहूंगी।
0: हाँ, जरूर देखिए और फिर बताइए अपनी राय हमें।
1: जी।
0: और अब देखिए वक्त हो रहा है श्रोताओं के पत्र लेने का, तो शुरू करते हैं खतों का सिलसिला।
1: जी हाँ, तो सबसे पहले यह पत्र है मोहम्मद सादिक आजमी जी का। उन्होंने 12 अप्रैल के कार्यक्रम के बारे में लिखा है कि इस अंक में पत्रों को प्राथमिकता दी गई, यह सुखद एवं संतोषजनक है, यह क्रम जारी रहेगा यही आशा है। समय से पहले मौसम में बदलाव कोई आम बात नहीं है, जापान के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर गंभीरता से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम मनुष्य ही इसके मुख्य जिम्मेदार हैं। कारखानों से निकलने वाले हानिकारक धुएं, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, आधुनिक विकास के नाम पर फैक्ट्रियों से टनों टन पानी को दूषित करते कचरे प्रकृति के सभी नियमों को तार तार करते जा रहे हैं। ऐसी दशा में ये बदलाव स्वाभाविक है, आवश्यकता है इस ओर विशेष ध्यान देने की।
0: अच्छा, ये शायद उस अंक की बात करें जब हमने बात की थी ना कि समय से पहले ही इतनी गर्मी हो गई है, तो यही मोहम्मद जी की टिप्पणी है।
1: हाँ, आगे लिखते हैं कि भाई चिन्मय महतो जी रेडियो प्रदर्शनी के आयोजन में 1000 से अधिक रेडियो को एकत्रित कर इतिहास बना रहे हैं, हम उनके इस अनूठे कार्य हेतु बधाई प्रेषित करते हैं।
0: चिन्मय जी के संग्रह को देखने का तो रोहिणी मेरा भी बहुत मन है।
1: जी,
0: चिन्मय जी ने कहा था कि वो अपने संग्रह की तस्वीरें भेजना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो चिन्मय जी, ईमेल में फोटो अटैच करने की व्यवस्था जो है उपलब्ध है, आप वीडियो भी भेज सकते हैं, तो हमें जरूर भेजें।
1: जी, और मोहम्मद जी आपके पत्र के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि हर पृथ्वीवासी को अब प्रकृति के बदलावों की ओर संवेदनशील होकर अपने निजी स्तर पर कदम उठाने होंगे, तभी कोई बात बनेगी।
0: सही कहा। और अब देखिए ये अगला पत्र है RS विजय कुमार जी का। लिखते हैं, मेरे पूज्य पिताजी की तबीयत बिगड़ गई, ओहो, जो 92 वर्ष के हैं। मुझे उनके स्वास्थ्य संबंधी हालात पर ध्यान देना पड़ा, जिस कारण आप लोगों से पत्राचार करने में विलंब हुआ। हर शनिवार को प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य सरिता पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। साहित्य सरिता वास्तव में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसमें प्रसारित कहानियां जापानी समाज की एक प्रतिबिंब की तरह हमारे मन मस्तिष्क में समा जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गिनी चुनी 5-6 कहानियों को कई बार पुनः प्रसारण किया जा रहा है। आखिर कब तक हम उन कहानियों को सुनते रहेंगे? हम श्रोता भले ही बहुत पुराने हैं, जो 40-50 वर्षों से लगातार आपके कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नया सुनाइए। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहूंगा कि जापान रेलवे जर्नल जैसी सूचनाप्रद एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस को हिंदी सबटाइटल्स के जरिए सीधे पोस्ट करने के बजाय अगर वीडियो को हिंदी का स्वर देकर वाचन करें तो विषय वस्तु और बेहतरीन तरीके से श्रोताओं की समझ में आ जाएगी। हाल में मैंने हिंदी फेसबुक पेज पर जापान रेलवे जर्नल के अंतर्गत रेलवे एवं एआई मास ट्रांस इनोवेशन 2025 प्रदर्शनी की संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से देखने का सुअवसर मिला। सचमुच ये प्रदर्शनी अपने आप में अनोखी थी। भविष्य में एआई का सदुपयोग करते हुए रेलवे की मरम्मत, रखरखाव, लेवल क्रॉसिंग पर सुनिश्चित सुरक्षा तथा यात्रियों को त्वरित एवं बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने का जापान रेलवे कर्मचारियों और कंपनियों ने संकल्प लिया है।
1: विजय कुमार जी, आपके पिताजी का स्वास्थ्य अब बेहतर हो गया होगा, इसकी आशा करते हैं। आपने खुलकर अपने मन की बात हम तक पहुंचाई, इसके लिए धन्यवाद। साहित्य सरिता वास्तव में बहुत पसंद किया जाता है और हम चाहते हैं कि इसके तहत नई नई कहानियां आप तक पहुंचाएं। लेकिन असल में इसकी नई कड़ियों को बनाना बंद कर दिया जा चुका है, इसलिए पुराने अंक सुनवा रहे हैं।
0: जी हाँ, और नए अंक बनाना कब आरंभ होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आपकी और अन्य श्रोताओं की ये टिप्पणी हम अपने अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं ताकि उन्हें जानकारी हो जाए कि श्रोता कितने मन से कहानियों का इंतजार करते हैं। और जापान रेलवे जर्नल का आप पूरा आनंद ले रहे हैं, इसके लिए आभार। इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए और क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इसका सुझाव देने के लिए धन्यवाद। हम भी अपने स्तर पर इस मुद्दे पर विचार करना चाहेंगे।
1: अब अगला पत्र है प्रदीप बैसाख जी का, पूर्व वर्धमान पश्चिम बंगाल से। लिखते हैं, 10 अप्रैल के फेसबुक पोस्ट पर देखा, जापान के कागावा प्रिफेक्चर के अंतर्गत स्थित शिशिजिमा द्वीप पर वसंत से लेकर ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ तक फैली फूलों की अद्भुत छटा वास्तव में प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। मेरा मत है, सबसे पहले यह पहल प्रकृति और पर्यटन के बीच एक संतुलित एवं सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती है। मितोयो शहर में सेतो अंतर्देशीय सागर की पृष्ठभूमि में सजी रंग बिरंगी फूलों की कालीन न केवल दर्शकों को आकर्षित करती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाती है। दूसरा, यह आयोजन हमें सिखाता है कि किस प्रकार योजनाबद्ध प्रयासों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के साथ एक छोटे से द्वीप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकता है। और तीसरा, पर्यटकों के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि यह दृश्य केवल देखने में ही सुंदर नहीं बल्कि मानसिक शांति और सुकून का भी स्रोत है। आज के व्यस्त जीवन में इस प्रकार के प्राकृतिक स्थल लोगों को आंतरिक संतुलन प्रदान करते हैं। यह दिखाता है कि प्रकृति के प्रति प्रेम, देखभाल और सही योजना से किस प्रकार असाधारण सौंदर्य का सृजन संभव है। आशा है कि भविष्य में भी यह सुंदरता बनी रहेगी और अधिक लोग इस अद्वितीय अनुभव का आनंद ले सकेंगे।
0: प्रदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रकृति को सहेज कर संजो कर रखने से असाधारण सौंदर्य का सृजन संभव है। अपने आसपास साफ सफाई रखना, फूल उगाना और अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट पेड़ पौधों और वनस्पतियों, जड़ी बूटियों को संजो कर रखने से उनका बड़ा महत्व है। इंसान भी प्रकृति का एक अंग है, एक हिस्सा है और हमें प्रकृति के सभी पहलुओं के साथ तालमेल बिठाकर ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो।
1: देखिए, अभी सादिक आजमी जी ने भी इसी की ओर इशारा किया था कि इंसान जब तक प्रकृति की अनदेखी करता रहेगा उसे इसके दुष्प्रभावों को झेलते रहना पड़ेगा। समय आ गया है कि अपने आसपास के नदी नालों, नहरों को कचरा मुक्त रखें और

0: एक स्वस्थ वातावरण को जन्म दें।
1: बिल्कुल सही कहा रोहिणी जी आपने। और अब देखिए वक्त हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो श्रोताओं नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में।
1: रोहिणी जी ये बताइए कि साइकिल से आपकी कैसी कैसी यादें जुड़ी हुई हैं?
0: साइकिल का जिक्र होते ही बचपन की यादों का पिटारा खुल जाता है।
1: अच्छा,
0: मैं तो स्कूल साइकिल पर जाया करती थी। पहले तो हाफ पैडल चलाना सीखा था, फिर अभ्यास करते करते आराम से सीट पर बैठ के साइकिल चलाने लग गई थी। कभी कभी तो साइकिल चलाने की धुन में घर लौटने में देर हो जाती थी और खूब डांट पड़ती थी।
1: हाँ अच्छा, वैसे भारत के शहरों में कार का चलन और सड़कों पर भीड़ बढ़ने के साथ साइकिल चलाना आजकल कम हो गया है, परंतु यहाँ जापान में तो आज भी साइकिल चलाई जाती है। असल में तो जापान में रहने वालों की दिनचर्या साइकिल के बिना अधूरी है। सुबह बच्चों को नर्सरी या डे केयर पहुँचाना हो या आसपास से राशन पानी लाना हो, कई लोग ये सारे काम साइकिल से ही करते हैं। छुट्टी के दिन आप एक पूरे परिवार को अपनी अपनी साइकिल पर सवार होकर बाजार, पार्क, संग्रहालय या अन्य जगहों पर जाते देख सकते हैं, है ना
0: जी? अरे मैं तो जापान आकर इतनी भांति भांति की साइकिल देखकर चौंक गई थी।
1: अच्छा
0: जी, खासकर यहाँ की मामाचारी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मम्मी वाली साइकिल कह सकते हैं। साथ ही बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक साइकिल भी होती है। इन पर आगे और पीछे बच्चों को सुरक्षित बैठाने के लिए खास सीटें भी लगी होती हैं। ये साइकिलें ऊबड़ खाबड़ चढ़ाव या ढलान वाले रास्तों पर बड़ी आसानी से चल जाती हैं। यह सब देखकर मुझे यह एहसास हुआ था कि जापान ने तूफानी बुलेट ट्रेन भले ही चला ली है, पर जितेंशा यानी साइकिल की सवारी को भी संजो कर रखा है।
1: ये तो आपने खूब कहा। और साइकिल चलाने के फायदे भी तो बहुत हैं। देखिए, सेहत के लिए अच्छी है, पर्यावरण के लिए फायदेमंद है ये दो पहिए की साइकिल। पर सुनने वालों को ये तो बताइए कि आज हम साइकिल की बातें क्यों कर रहे हैं?
0: जी अभी बताती हूँ। असल में जापान में साइकिल के चलन के साथ साथ बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण पिछले साल यह तय किया गया था कि साइकिल चलाने में लापरवाही को अब नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। इसलिए पहली अप्रैल से नया ब्लू टिकट चालान लागू किया गया है। अगर आप मोबाइल देखते हुए, हेडफोन लगाए हुए या छाता पकड़कर साइकिल चलाते हैं तो ब्लू टिकट मिलेगा और निर्धारित जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। इस नए ब्लू टिकट सिस्टम के तहत नियम उल्लंघन के स्तर के अनुसार 5,000 से 12,000 येन तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, यानी करीब 2,500 से 6,000 भारतीय रुपये। और सबसे बड़ी बात, अगर जुर्माना नहीं भरा तो आपराधिक केस भी दर्ज हो सकता है।
1: जी हाँ, मैं कुछ और नियम जोड़ दूं इसमें। देखिए, जैसे ट्रैफिक लाइट की अनदेखी करने, बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करने और सिद्धांतिक रूप से फुटपाथ पर साइकिल चलाने पर भी ब्लू टिकट कट सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये नियम आपको क्यों बता रहे हैं, तो वो इसलिए कि जापान आने वाले सैलानियों के लिए भी किराए पर लेकर साइकिल चलाने की सुविधा है। अब अगर आप जापान घूमने आए तो आपको इन नियमों की जानकारी तो होनी चाहिए ना। बस इसीलिए इन सारे नियमों की पूरी जानकारी हमने NHK वर्ल्ड हिंदी की वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी डाल दी है।
0: जी ये नियम सख्त लग सकते हैं, लेकिन ये सख्ती लोगों की जान बचाने और पैदल चलने वालों, खासकर की छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ही है। सड़क दुर्घटना एक चिंता का विषय तो है। आगे और जो बता दूं कि हाल में आए NHK के रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के महीने में पूरे जापान में 2,147 टिकट जारी किए गए।
1: अच्छा, इतने सारे?
0: जी, इसमें सबसे ज्यादा 846 ऐसे मामले थे जिसमें लोगों ने स्टॉप लाइन पर पुलिस की चेतावनी के बावजूद उन्हें उल्लंघित किया।
1: अच्छा
0: जी। और वायला जी, 713 मामले स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए साइकिल चलाने वाले थे।
1: अच्छा।
0: और 298 मामले में ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी की गई थी।
1: अच्छा, तो ये है। तो श्रोताओं, अगर आप भी भविष्य में जापान घूमने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ की मशहूर बुलेट ट्रेन की सवारी और खूबसूरत मंदिरों के दर्शन के साथ साथ यहाँ की सड़कों पर साइकिल चलाने का अनुभव जरूर लें। बस ध्यान रहे कि ट्रैफिक नियमों का पालन पूरी तरह से हो और आपकी साइकिल की घंटी बेवजह ट्रिंग ट्रिंग ना करे।
0: अरे, हम लोगों ने तो साइकिल की घंटी के बारे में बताना ही भूल गए हम लोग।
1: जी जी, बताइए
0: जी। हाँ। यहाँ आपको साइकिल की घंटी भूले भटके ही सुनाई देती है। फुटपाथ पर पहला अधिकार पैदल चलने वालों का होता है और उन्हें हटाने के लिए घंटी बजाना बहुत ही असभ्य माना जाता है।
1: अक्सर सुनाई नहीं देती है ना।
0: जी,
1: बहुत कम होता है ना। हाँ। कि कोई बजा रहा हो घंटी। हाँ।
0: मैंने तो कभी भी नहीं सुना।
1: अच्छा।
0: धीमी गति में नजदीक जाकर अगर थोड़ा सुमिमा सेन यानी माफ कीजिए बोलना ही काफी होता है और आपको रास्ता मिल जाएगा।
1: हाँ, ये बात तो आपने सही कही। तो रोहिणी जी, आप चला भी रही हैं ना साइकिल जापान में?
0: हाँ, मैं तो चलाती हूँ, मेरे आसपास के काम के लिए बहुत ही जरूरी है।
1: ठीक है, तो हमें विश्वास है श्रोताओं कि आपको जापान में साइकिल चलाने के विषय में काफी जानकारी मिल गई होगी। और अब हम जानना चाहेंगे कि साइकिल से आपकी कैसी यादें जुड़ी हुई हैं, तो संदेश भेजकर हमें बताना ना भूले। हमें आपके संदेशों और विचारों का इंतजार रहेगा।
0: आइए अब साइकिल से ही जुड़ा एक गीत सुनते हैं। शीर्षक है जितेंशा यानी साइकिल और गाया है जूडी एंड मैरी ग्रुप ने।

0: अब समय हो रहा है दोस्तों आपसे इजाजत लेने का, तो फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को
1: और रोहिणी रमन को।
0: सायोनारा, नमस्कार।